0: पकटे सुख मिटे ते तराम नाम पकटे दुख मिटे ते तराम नाम
1: पकटे दुख मिटे ते तराम नाम
0: भव समुच्च सुख जनाव ते तराम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम
1: परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम
0: जन र जीवन धन के राम
1: नाम
0: भक्त जन र जीवन धन एक राम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम